नमस्कार, 4EB के ग्लोबल प्रोग्राम के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आशा है आप सब राजी खुशी से होंगे। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। बदलते मौसम में आप और परिवारजन सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और तंदुरुस्त रहिए। चले आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक भक्ति गीत से, फिल्म काजल से आशा भोंसले जी की सुरीली आवाज में।

हाल ही में मदर्स डे आया और बीत गया। आशा है सभी माओं को एक्स्ट्रा पैम्परिंग और प्यार मिला होगा। आज के सुविचार में माँ के महत्व की एक कथा मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे अधिक माँ को ही क्यों महत्व दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर समझाने से पहले एक काम करो, 5 शेर का एक पत्थर कपड़े में बांधकर अपनी कमर पर बांधो और एक पूरे दिन ऐसे ही रहना। अगली सुबह वह व्यक्ति फिर विवेकानंद जी के पास आता है। वह काफी थका हुआ था और दर्द में था। उसने कहा, स्वामी जी यह तो बड़ा कठिन काम दिया आपने, एक दिन में ही मैं तो थक गया और दर्द में हूं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम एक दिन पत्थर का भार नहीं सह सके, जबकि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीनों तक कोख में रखती है, शारीरिक मानसिक भावनात्मक कष्ट भी सहती है, फिर भी वह मुस्कुराती है, घर संभालती है और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती। माँ की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सहनशीलता है। माँ बिना किसी स्वार्थ अपने परिवार के लिए जीती है। माँ के प्रति सम्मान केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में होना चाहिए। माँ हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पहले रखती है। माँ थकान और दर्द के बावजूद मुस्कुराती रहती है। चलिए बीते मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक माँ वाला गीत सुनते हैं, फिल्म करण अर्जुन का।

जिन श्रोताओं ने देर से ट्यून इन किया है उनका हार्दिक स्वागत है 4EB ग्लोबल के साप्ताहिक हिंदी प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में। मैं हूं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आज का कार्यक्रम मैं आशा भोंसले जी को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करना चाहती हूं। आज हम सुनेंगे आशा जी के एवरग्रीन हिट्स और कुछ बातें उनके जीवन से जुड़ी हुई। चलिए शुरुआत करते हैं आशा जी के शुरुआती दिनों से। 1958 की फिल्म दिल्ली का ठग में किशोर कुमार और नूतन पर फिल्माया गया एक बहुत ही प्यारा गीत है जो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगी। इस गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र जी ने। यह एक प्यारा सा रोमांटिक गीत है जो चांदनी रात में नदी किनारे कूल नाइट में फिल्माया गया है। इस गीत को हमारे जाने माने म्यूजिक बैंड सनम ने भी गाया है और मिलियंस ऑफ व्यूज पाए हैं। इस गीत को बॉलीवुड का मूनलाइट रोमांटिक सॉन्ग माना जाता है। चलिए सुनते हैं।

ये संदेश ब्रेस्ट स्क्रीन क्वींसलैंड की ओर से है। स्तन जांच हर दो वर्ष में कराने की सलाह दी जाती है और ये 50 से 74 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। नियमित स्तन जांच आपका जीवन बचा सकती है क्योंकि इससे स्तन कैंसर की शुरुआती लक्षणों का समय पर पता चल सकता है। हम 40 वर्ष की महिलाओं तथा 75 वर्ष या

0: उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए भी मुफ्त जांच उपलब्ध कराते हैं। आपको डॉक्टर की रेफरल की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता होने पर अनुवादक की व्यवस्था भी की जा सकती है। अपॉइंटमेंट के लिए 1320 पर कॉल करें या breastscreen.qld.gov.au पर बुक करें। क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन द्वारा अधिष्ठान प्रायोजक।
1: अगला गीत मैं लाई हूँ 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल से। यह काफी प्यारा गीत है। तीसरी मंजिल के कई गीत काफी मशहूर रहे हैं। बताया जाता है कि शम्मी कपूर अपनी फिल्मों के म्यूजिक पर काफी ध्यान दिया करते थे। जब डायरेक्टर नसीर हुसैन ने नए उभरते म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन को इस फिल्म के गीतों के लिए लिया तो शम्मी कपूर ने कहा कि यह नया लड़का कौन है, और फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो सारे गाने सुपरहिट। बताया जाता है कि इस फिल्म के हीरो के लिए पहले देवानंद को साइन किया गया था, फिर डायरेक्टर और उनके बीच कुछ मनमुटाव के कारण देवानंद मूवी से निकल गए। जब शम्मी कपूर को लेने की बात हुई तो शम्मी कपूर ने एक शर्त रखी कि देवानंद जी शम्मी कपूर को पर्सनली इस फिल्म में भूमिका अदा करने की बात करेंगे और बताएंगे कि देवानंद यह फिल्म छोड़ रहे हैं, और ऐसा ही हुआ। तब जाकर यह सुपरहिट फिल्म शम्मी कपूर की बनी और सुपरहिट सॉन्ग्स हमें सुनने को मिले। चलिए आशा जी की प्यारी आवाज में सुनते हैं तीसरी मंजिल फिल्म का यह हिट गीत।

इस गीत से पहले मैं आपको बता रही थी, तीसरी मंजिल फिल्म के दौरान आरडी बर्मन जी एक नए और युवा संगीतकार थे। इसी फिल्म में एक ब्लॉकबस्टर गीत है मोहम्मद रफी और आशा जी का। उस गीत को सुनाने के लिए बर्मनदा आशा जी के पास गए। उनके घर में बाजा वाजा लेकर जमीन पर बैठे और आशा जी को गाना सुनाया। उसमें आ जा वाला पोर्शन जब आया तो आशा जी को शॉक लग गया। आशा जी जो अब तक कई गीत गा चुकी थीं और उनको अपने ऊपर गुरूर था, और इस नए संगीतकार के ऐसे गाने को सुनकर उनका सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। यह किस्सा आशा जी ने इंडियन आइडल में एक बार बताया था। यह एक बहुत ही फनी किस्सा है। जब बर्मनदा ने उन्हें गीत की धुन सुनाई तो आशा जी ने सोचा कि इस गीत को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उन्होंने बर्मनदा से कुछ दिनों की मोहलत मांगी। यही आशा जी रात दिन प्रैक्टिस करती, क्योंकि वे उस समय एक बहुत बिजी सिंगर थी तो उन्हें फ्री टाइम नहीं मिलता था। तब वे अपने कार में ही स्टूडियोज में आने जाने के दौरान पीछे की सीट पर बैठकर प्रैक्टिस करती थी। आशा जी के घर के पास एक अस्पताल था। एक दिन ड्राइवर ने कहा, आशा जी हॉस्पिटल में ले चलूं क्या? आशा जी हैरानी से ड्राइवर को देखने लगी तो ड्राइवर बोला, 2-3 दिन से पीछे सीट पर बैठकर आपको सांस नहीं आ रही है ना, इसीलिए पूछा। आशा जी की हंसी छूट गई। आप भी गाना सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आशा जी ने कैसी प्रैक्टिस की होगी और ड्राइवर को क्यों ऐसा लगा होगा कि आशा जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। तो चलिए तीसरी मंजिल का यह फेमस गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले जी की आवाजों में।

0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
1: आप सुन रहे हैं 4EB ग्लोबल का साप्ताहिक हिंदी प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड, आपकी आरजे सीमा श्री कुमार के साथ। चलिए अब बातें करते हैं 1972 की फिल्म अपना देश की, जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज थे। यह गीत ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था अपने खास स्टाइल और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए। इस गीत में आरडी बर्मन का गाया मेल पार्ट, जिसमें उनके वॉइस इफेक्ट को काफी सराहा गया था। कहा यह भी जाता है कि राजेश खन्ना ने बर्मन दा से गुजारिश की थी कि उनके इस गीत में बर्मन दा के वॉइस इफेक्ट को डाला जाए। इस गीत में लोकल फ्लेवर के साथ ही जापानीज पॉप, अमेरिकन म्यूजिशियन आर्मस्ट्रांग का स्टाइल, पारंपरिक देशी ढोलक, इन सब का एक फ्यूजन था। चलिए अब सुनते हैं

तीसरी मंजिल फिल्म का एक और किस्सा है जो आशा जी ने बताया है। तीसरी मंजिल फिल्म के गीतों के बारे में बताते हुए आशा जी कहती हैं कि जब मोहम्मद रफी जी के साथ उन्हें ओ हसीना वाला गीत रिकॉर्ड करना था, तब डायरेक्टर नसीर हुसैन और बर्मनदा के बीच बैट लगी थी। नसीर जी ने कहा कि रफी जी बेहतर गाएंगे और बर्मनदा ने आशा जी पर बैट लगाई। 500 रुपये की बैट थी। तब आशा जी बहुत नर्वस थी। वे दीदी लता जी के पास गई और बोली कि काफी नर्वसनेस फील हो रहा है इस गीत को गाने के लिए। तब लता जी बोली, आशा तू पहले मंगेशकर है और बाद में भोंसले। मंगेशकर किसी भी गीत से डरते नहीं हैं। जाओ और अच्छा गाओ। आशा जी कहती हैं कि रफी साहब ने गले से गाया, परंतु आशा जी ने उसे पेट से गाया, तो आशा जी का और मादक बन गया और बैट जीता बर्मनदा ने। मैंने आपके लिए यह गीत प्ले किया था पहले। क्या आपको भी आशा जी का गाया भाग ज्यादा पसंद आया? चलिए अब एक मलयालम गीत सुनते हैं फिल्म ओडुम कुदिरा चाडुम कुदिरा से, जिसे गाया है संजीत और अनिला ने।

0: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell them your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
1: Station sponsor.
2: 1984 की एक फिल्म थी उत्सव, जिसमें एक फीमेल ड्यूएट सॉन्ग है जिसे लता मंगेशकर जी और आशा भोंसले जी ने गाया है। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और यादगार गीतों में से एक है यह। इसे मंगेशकर बहनों का जादुई ड्यूएट माना जाता है। आशा जी बताती हैं कि रिकॉर्डिंग के समय जब लता जी ने गाने का पहला आलाप शुरू किया तो लता जी की सुरीली आवाज में आशा जी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि वे अपनी लाइन्स ही भूल गईं। यह गीत दो महिलाओं के बीच आधी रात को साझा की गई भावनाओं, अकेलापन और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह गीत अपनी शांत और रुमानी धुन के लिए जाना जाता है। लता जी की शांत और परिपक्व आवाज और आशा जी की युवा और चुलबुली आवाज का मिश्रण इस गाने को एक गहरी भावनात्मकता प्रदान करता है। चलिए उत्सव का वही गीत अब सुनते हैं।

आशा जी ने 2007 में मशहूर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर ब्रेटली के साथ एक गीत गाया था, यू आर द वन फॉर मी, जिसने क्रिकेट और बॉलीवुड को मिलाया था। 2006 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत में खेलने आए थे ब्रेटली। तभी उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बैठे आधे घंटे में एक गीत लिख लिया। ब्रेटली ने अंग्रेजी का भाग और आशा जी ने हिंदी वाला भाग गाया था। आखिर में ब्रेटली ने दो लाइन हिंदी में भी गाया था। ब्रेटली ने उस समय कहा था, एक हैट्रिक बॉल फेस करने से भी ज्यादा टेंशन वाला काम था आशा जी के साथ गाना रिकॉर्ड करना। आशा एंड फ्रेंड्स वॉल्यूम 1 वाला यह एल्बम था, जिसमें आशा जी ने ब्रेटली, संजय दत्त, उर्मिला मटोंडकर जैसे कई कलाकारों के साथ गीत गाए हैं। चलिए ब्रेटली और आशा जी का गाया वही गीत अब सुनते हैं।

0: Asha ji, I'll be yours forever.
1: Oh, really?
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: स्टेशन स्पॉन्सर।
4: 1995 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी रंगीला और तन्हा तन्हा उसका एक आइकॉनिक गीत था। इस गीत को एआर रहमान का हिंदी डेब्यू सॉन्ग माना जाता है। आशा जी बताती हैं कि एक फ्लूट के साथ उन्होंने यह गीत रिकॉर्ड किया था और एआर रहमान ने बाकी इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक बाद में फिल इन किए थे। चलिए यह गीत सुनते हैं।

आपने आशा जी के कैबरे सॉन्ग्स तो काफी सारे सुने होंगे, इसलिए आज मैंने अपने इस कार्यक्रम में उनके अन्य गीतों को इंक्लूड किया। आशा जी की वर्सटाइल आवाज ने बड़े बड़े गीतों को आसानी से गाकर हमेशा के लिए अमर बना दिया है। आने वाली जनरेशन भी आशा जी के गीतों को जरूर पसंद करेगी। आखिर में हम सुनेंगे 1997 की फिल्म दिल तो पागल है का ले गई वाला गीत। इसी गीत के साथ आज का यह आशा जी को हमारी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चला है। आशा है आज की बातें और गीत आपको पसंद आए होंगे। यूं ही हमारे साथ हर शनिवार और रविवार को जुड़ते रहिए और हमारे कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। आशा है आपके सभी दिन मंगलमयी हों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराइए। अगले महीने फिर मुलाकात करने का वादा करते हुए मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार आपसे विदा लेती हूँ। सीमा नाउ साइनिंग ऑफ। नमस्कार।